नमाजों में उन्हीं के दर पे मैं करता जबी साई, नमाजों में उन्हीं के दर पे मैं करता जबी साई।

यानी सब कुछ हमको आता है, लेकिन पी के खूने आरज़ू फिर कैफे जामे कुन बदे।

उनके रोए तो जलवे चुरा कर जगमगाता है दुनिया को बर, मगर ये अहले नजर जानते हैं खुद हसी माहे कामी है। द शाइन ऑफ द मून इज लाइट ऑफ द सन, इन द सेम वे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फॉर हिम यू वुड नॉट हैव हैड द सन, द मून, द स्टार्स, द मस्जिद, द काबा शरीफ, द मिंबर, द मीनारास, नथिंग, न मस्जिद के

या तू है सबसे जुदा, तू है सबसे जुदा। ऐ रसूले खुदा सरवरे अंबिया, तू है

या रब करम से अपने तो दोनों जहान दे, जो मुस्तहिक गजब का है उसको अमान दे। या रब करम से अपने तो दोनों जहान दे, जो मुस्तहिक गजब का है उसको अमान दे।